बोला कोई गाला कहीं गए थे लोग कहीं मिथिला ले गले की मिथिल ले नदाय मिथिल लेते हैं बेलेंग दगिन पुतिंग अल उल्लिम पारे दगिन पुतिंग अल उल्लिम पारे इम्बेले बेले अपाई नलम बाल बेले थी ऐसे कहीं मुंह कुंडे अलन लोग देंगे आ रखे रहे मरण दगिन पुतिंग अल उल्लिम पारे इन उल कोई ले वाले इन ऐ उल्ले वाले उल मत मंजिया जम बदो नमो दुएल नस कगे पहली नमो जोर से इन दुएल कोई चिकल मा लेने में ज़्यारो करो वाले इन मिथिल देन अर्रा आयलों इन मिथिल इंगिस पुलंगी थी दुओ दुओ सी जी असिन जलंबो असिन जलंबो बुद्ध दुएल में ने बुलो मत नमो एल अलब एला नम दी तेया वो वाल तेह कौ के जंग अलन अंग एन प्याव नई ए खेंग कगे बते तेर नवस पेन भी नस लेल इलेंगी अलंग गिसी खिलम लेकरी नस जी इन दियो जियो या ना इन दीन तबू इन जा इन दुओ अल दुओ दो दो दो तो ले ना दो बत दो बार ना दें उड़वाल बकोल दाई मरंग केला कोल दा जी दें आ रहा जरा ला कोल दा बो उड़ोगे मरंग किल्मा आयलों इन ये नई किंग ऐसे कुआ के इनंग का डूम रंग वा नाइं कुआ बकेले नमक कुंडे नमस उड़ा का उल्टिया ना खेन कगे तेगे कि गल नमा हुआ ए अल से इंगल दो तुल्ले इंजा इनसे इंजा इनसे इंजनी एलसे इल्ला जावी इनसे नुम्बने ना आमी इनसे इन प्यावा दो इन प्या दा के दोरा से इंबा इन प्यावा मरंग